दावत एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती आपके लिए लाए हैं 2000 पाउंड का हॉलिडे जीतने का मौका, साथ में 150 पाउंड्स के वन फॉर ऑल रेस्टोरेंट वाउचर्स। अभी एंटर कीजिए @winwithdawat.com या फिर इसका QR कोड आपको जहां भी नजर आए उसे स्कैन कीजिए। दिस कॉम्पिटिशन रन्स फ्रॉम 6th मई टू 6th ऑगस्ट। यू मस्ट बी 18 और ओवर टू एंटर विथ वन एंट्री पर हाउस होल्ड। टीज एंड सीज अप्लाई। विजिट winwithdawat.com और याद रखिए, राइस इजंट जस्ट राइस अंटिल यू've tried दावत एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती। स्टार्ट

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

Taken from Imtiaz Ali's, मैं वापस आऊंगा. AR रहमान द कंपोजर, किस मिस यारा ऑन सनराइज. देवेंद्र पारिक, थैंक यू फॉर योर मैसेज. सुखी संधु इन ब्रिस्टल, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन. शुभ गुरु पूर्णिमा टू ऑल दोज हु आर सेलिब्रेटिंग. Don't miss Southall Travel's special prices to India, Pakistan, the UAE, Thailand, Bali and Africa. For the best fares and 24/7 support, call 0208-574-8410 or visit southalltravel.co.uk today. Welcome to your daily dose of food trivia, recipes and food facts on Sunrise Radio. Brought to you by Suhana Foodies. Suhana, maza aa gaya. Ready for

0: time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
1: Good morning, it's 11:19.
2: Aap sun rahe Sunrise Radio, Shabnam Sahi ke saath. Now, I have a very important message. Kya aap jante hain ki childhood vaccinations bachchon ko best protection dete hain? England mein har saal 5,000 से भी ज्यादा बच्चों की मौत होती है. बचपन के इन्फेक्शंस, सीरियस बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन या फिर कभी कभी लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी की वजह बन सकते हैं. बचपन के इन्फेक्शन जैसे मीजल्स या वूपिंग कॉफ समाज में बहुत आसानी से फैलते हैं. अगर आपका बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है. याद रखिए, NHS पर दिए गए सभी चाइल्डहुड वैक्सीन्स दुनिया में मिलियंस ऑफ बच्चों ने लगवाए हैं जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड एक्सेलेंट है. प्लीज रिमेम्बर दिस, अपने बच्चे को बेस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए उनके टीके, उनके वैक्सीनेशंस टाइम पर लगवाना बहुत जरूरी है. अगर आपके बच्चे ने कोई वैक्सीनेशन मिस किया है, आज ही अपने GP को कैच अप के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए. क्या आपके बच्चे के वैक्सीन अप टू डेट हैं? उनके रेड बुक को चेक कीजिए और अपने GP प्रैक्टिस से संपर्क कीजिए. फॉर इन्फॉर्मेशन NHS.UK/childhoodvaccinations पर जाइए.
3: Listener's Choice, brought to you by Colors TV.
4: अगर आप उसे लड़खड़ाने भी नहीं देंगे तो वो अपने आप को संभालना कैसे सीखेगी?
5: वो बाहर की नुकीली दुनिया के लिए नहीं तैयार है.
6: शायद समझ नहीं आएगी, पर याद रह जाएगी.
1: Follow Juhi's inspiring journey of justice, courage and dreams in Juhi Mui every Monday to Friday, 7:30 PM only on Colors TV.
2: एक बात बताइए, हमारी पसंद को वोट ना देकर आपको बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है ना? चलिए जी, दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल, आई शैल जस्ट हैव टू प्ले इट. दोस्ताना, विशाल ददलानी, आई विल बी ऑलराइट. ऑफ कोर्स आई विल बी ऑलराइट. वेलकम टू द शो.

0: जाने क्यों दिल जानता है तू है तो आई बी ऑल राइट। या तो 2006 या 2008 चश्मे को साफ करना पड़ेगा। दोस्ताना का ये गाना विशाल ददलानी की आवाज में। जहां भी आप सुन रहे हैं, जो भी सब कर रहे हैं, आपके मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच। विजय जी कहते हैं नमस्ते शबनम जी, सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो एवं मंगलमय हो। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू यू एज वेल, थैंक यू सो मच। सनराइज रेडियो पर इस घंटे का लिसनर्स चॉइस,
1: ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
2: बहुत हुआ सेटबैक, अब होगा मेरा कमबैक।
0: अ ड्रीम वेटिंग टू बी रिवाइव्ड। वॉच डॉक्टर आरएमबी मंडे टू फ्राइडे 7 PM ओनली ऑन कलर्स टीवी। The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk. Those who are dialing 020-881-38840 now, I'm hoping that it is only to test if your phone is working or not. Too early. Apar Shakti Khurana, Lavza on Sunrise. Good morning.

0: Music from Pati Patni or Vo Do. And before that, Hanji, kicking off your Wednesday drive home. Welcome, welcome. Thank you for your warm welcomes to me as well.
1: Back-to-back songs with Ambala Sweets. No need to fly back home this summer. Come to Ambala for our two-ingredient Khoya Barfi, made from pure buffalo milk, just like the barfi you get back home, but crafted in England. Taste it for free this month. We also have the best Garak Chai, Masala Chai and Elechi Chai, just like back home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
0: You're like very efficient clockwork, ain't you? Right on time. Super, super afternoon to you. Alrighty-ho, let's get straight into the trio. This is what it sounds like today. All three peeps, please, if you can mention their names, if you can identify them first and then give me their names, that'd be great. If you get them right, I will give you a shout out on the radio. The number to WhatsApp your answers to, 07925 700 272. It's a little bit emosh today. Here we go.
2: तूने वो गुनाह किया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है चला जा यहाँ से वरना
3: चला जाऊंगा बाबूजी एक बार साहिबा से मिली
2: खबरदार जो उसका नाम अपनी जुबान पर लाया तो
4: ये क्या हो गया करण तुम क्या गए मेरी तो जिंदगी ही बदल गई पर बाबूजी को मेरी बात पर यकीन ही नहीं है
3: मुझे नहीं लगता कि रिश्ता बनाने का सही तरीका है रही बात समझौते की तो अब ये मेरे लिए धर्म युद्ध है
0: Dun, dun, dun, dun. What are you thinking? All three actors' names, please. Let's have one more listen.
2: तूने वो गुनाह किया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है चला जा यहाँ से वरना
3: चला जाऊंगा बाबूजी एक बार साहिबा से मिली
2: खबरदार जो उसका नाम अपनी जुबान पर लाया तो
4: ये क्या हो गया करण तुम क्या गए मेरी तो जिंदगी ही बदल गई पर बाबूजी को मेरी बात पर यकीन ही नहीं है
3: मुझे नहीं लगता कि रिश्ता बनाने का सही तरीका है रही बात समझौते की तो अब ये मेरे लिए धर्म युद्ध है
0: Get your answer in if you think you know, if you can identify all three actors. Hopefully I'll have some shout-outs lined up for you. In the meantime, listener's choice sounds like this.

0: Tracy. It is your winning song today. Or this hour, should I say. A few wrong answers to mention.
1: Listener's Choice, brought to you by Colors TV.
2: अब हम 16 साल की मासूम लड़की नहीं रहे, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुके हैं. आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है.
3: शिकवे शिकायतें तुमसे.
4: Watch Seher Hone Ko Hai Monday to Friday 9 PM on Colors TV.
1: The Gold Rate with Sunrise Radio on 963 and 972 AM in London. Nationwide on DAB. Worldwide via sunriseradio.com on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers and for the Radio Player and Nation Player app. Stay connected to your favorite Sunrise Radio 24 hours a day, 7 days a week.
0: Gold is trading at £97 and a penny per gram.
4: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk.
0: All right, before we get into the next song, let's get another listen to this trio.
5: तूने वो गुनाह किया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है. चला जा यहाँ से वरना.
6: चला जाऊँगा बाबूजी. एक बार साहिबा से मिली.
5: खबरदार जो उसका नाम अपनी जुबान पर लाया तो.
7: ये क्या हो गया करण? तुम क्या गए? मेरी तो जिंदगी ही बदल गई. पर बाबूजी को मेरी बात पर यकीन ही नहीं है.
6: मुझे नहीं लगता कि रिश्ता बनाने का सही तरीका है. रही बात समझौते की, तो अब ये मेरे लिए धर्म युद्ध है.
0: All three actors' names is one of my

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड, कैंटन रोड, और 66 मोनार्क परेड, लंदन रोड, मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट एशियन फ्यूनरल care.com.
2: This is Sunrise, the UK's biggest.